0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही बड़ा, लेकिन सब

0: इसलिए अभी आप भी चेंज देख करके और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कहीं 2500

0: tu ya si bajaste de ti o probaba tan me quedarte lejen papu que te Jesse Sarkar Rupa me Sada bachon ke saath rahe Aise Vatan me bhi Rehte बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते, साकार में साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते। जैसे चित्रों में दिखाती है ना, एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त ¿Por qué? Isimi bisirete.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी मत किया क्या हम आपस सबके पीति को बिंदु लगा दिया, इसलिए पीति को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है हिम्मत और मदद से I'm

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जब लेने वाला।

0: сотина. Ей гордил. Лекен дельце. Риела искру.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा से

उतनी फ्री रहती है। तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसीलिए सेवा में मुद्दी बिजी रहे। ये साधन अच्छा है, लेकिन जो सेवा आपको हलचल मिला है, मानो चांस नहीं मिला है। सेवा और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो वो सेवा क्या? उस सेवा का सभी के दुआओं से

स्वरूपो सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत।

हिसाब से शिवरो की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय चलो और कोई सेवा नहीं।

आपका ऐसी सेवा धरी जो स्वार्थ भाव नहीं हो। मुझे चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाए। ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आपके हो। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं। चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते। ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सूखिया

Savaştı.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का मान फिर भी अलग की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sambara.

でした。

beato. Ateneo. Sabato.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: से आप सबको मुबारक दे रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

एक बात बच्चों का सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहती है, पापा क्या करें, पुराने संस्कार है ना, बाप दादा मुस्कुराते जब कह रही हो मेरे संस्कार Yes।

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार ब्राह्मण जीवन

श्रेष्ठ आत्माओं के पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार तो मत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारथ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है, दोनों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले उठो, जिन्होंने रखा है वो उठो, खड़े हो जाओ, जिन्होंने रखा है आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा अच्छा यहाँ वाले कोई नहीं, यहाँ वालों ने नहीं रखा है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स जिन्होंने रखा है वो उठो, जिन्होंने रखा है। अच्छा, टीचर्स ने नहीं रखा है। अभी सोच सोच के उठ रहे हैं। अच्छा, और ये पहली लाइन ने रखा है, हाथ उठाओ, पहली लाइन वाले हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक को बैठ जाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों को हाथ नहीं उठवाते। हिसाब से नहीं, जैसे एवरी

श्रीमत पर चलने के सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए कोई को फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से 25 मार्क्स बनाई, जो पहला नंबर है, और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बनाई। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी ये मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास भी तो अनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट आप ही से रखो और अभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Este

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, योग कारण को निवारण करेंगे तब निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रैल रूप का भी अलबेला बनते। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब

Yoga.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में एक सत्य

Portaan.

にそっとしたコッカビネイジョーナ。カインバチキ

Didn't he kill the baby or

खराब चीज है, तो अगर कोई आप

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

channel.

Nossa.

0: उस आत्मा के भी कल्याण के व्रत, शुभ भावना, शुभ कामना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Master.

Jared.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक ओमा कुत्सा

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज

हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को मैं तो देते हूँ, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूरी

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी जान से लेती है, खुशी नहीं कमाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Essa.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना। बाप भी मर्ज कर

को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती, सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

फूल सत्ते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो

0: बच्चे भी रहने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैपन को समाप्त करो। ये सूखे मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सदी सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदी याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं कर के साखर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे सने के साखर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आते। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Yeah.

0: 死吧！是你的兄弟们喽，都是他给你的。मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त नहीं रह सकते हो क्या? बने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता भराओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसीह की, संगम युग है मसीह का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है, शरीर व्याधि में भी है वाह, ये भी बहुत उतरता है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Sí.

Some.

Sa

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रहे हो? भ्रष्टाचार का बोर कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। श्रेष्ठाचार का

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बेटी कलवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बादशाह फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। खुशी नहीं कमाए, ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो What the?

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया की हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीनों ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जो पहले पहले आई है उन्होंने अनुभव कर लिया, कभी भूखे रहे और ही जो गुड़ है ना उसको बोरन बीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं सबका पेट भर गया। फौरन बेटा बनाने आते हैं नहीं आते। कैसी भी हालत हो, ये गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये फौरन बेटा बहुत सुख देते, बनाने सीख जाओ। सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में ये बोरन बेटा बहुत काम में आएगा। लेकिन चार बातें याद कर, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं, सच्चाई, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूरा न हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती। दिल छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सारे वर्क

0: किसी की भी पालना लौकिक में भी भरोसे होती है, वही गुणों के शरीर के खाने पीने पर आई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वरदानी रूप दाता समाने की शक्ति है। संभालो, साखर में कितना किचड़ा डालते हैं। डालने वाले को वो किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब फ्रिश दे ओ।

Some good luck Brahma Bab Saman Banana Arthat Frishta Banana Shiv Bab Saman Banana Arthat Nirakar Istiti Me से प्यार रहना जिससे प्यार है उस जैसा बनना जब संकल्प

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

el que lié. Renato Sadae, liget pan raten ki. Trail karo, or afne.

देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची

फीचर्स बताओ। हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। क्यों बाप

0: चलते चलते माया अलबेला और आलस रायलालस ये रायलालस अलबेलापन स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने जाए थे जो सभी से हाथ उठवाए तो एवर रेडी सब हाथ उठा सके। समय का भी अभ्यास चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा अभ्यास करा रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार जैसे स्वमान रख

0: present. Be with Jesus now. To with his attention, Ujjayga. Kisi na kisi sanskar ke upar attention rakhna hai. To jaise yaad ke upar attention dete ho, uske saath saath usi samay ye bhi result paap dada ko do. Agar mano aap chahte ho, lekin us din aapke samne koi sanskar mitane ka karya nahi hua, to apne aapko baap ki mubarak dena. ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए. तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है. जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता. लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाए. अटेंशन देने वाला ये मुक्ति प्राप्त कर सकती है, बाबा का भी वरदान. इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा. और जो बाप दादा चाहते हैं संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे. अटेंशन में आए ना तो हो जाए, लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश।

Essence.

Sunday.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा

0: जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपना भविष्य सहज बनाने का।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाँव भी नहीं रहा।

0: इसलिए इस सब वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। पाप को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरो, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले, वाह। जैसे हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो पाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चलते। दिल शिकस्त भी हो जाते, दिल खुश की बजाय दिल शिकस्त। तो समझा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गया, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र अच्छा बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ? सबसे सुखम बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ

0: संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं चलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन चलाया नहीं, तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का रखो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दें, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से

हिम्मत वाले बन, तुम पाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, क्या करूं। और फिर सोचो पापा तो मदद दिए, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहली बच्ची की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं। तो आती अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप शिकस्त नहीं मन और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है, ऐसे समय पर निर्णय शक्ति शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाए। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो और धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग क्या हो उसके तो नहीं, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है